बाडिचा बिनु से बाप घनेरे पैसी पड़े मगे कोई तारे वायरी पैसी पड़े।

रक्षा रियाय विरद की पायद रहे पंत की जीत श्री साहेब जी सहाय खालसे जी दे बोल वाले बोला रे।

तौ प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिर घर जोग जति के सुर सुरार्दम शुद्ध सुधा देख शांत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखे प्राणपति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रत्ती बिन एक रत्ती के माते मतंग जर जर संग अनूप उतंग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन की गौन को जात निवारे भारी बुजान के भू बलि बेद न्यावत शीस न जात बिचारे एते भय तुगा भय भूपत अंत कौ नांगे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश दिशान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविक भगवान के भूप भवित भगवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बेन अंत कौ अंत के धाम सिधारे तीरथ नान दया दमदान सुसंजम नेम अनेक विशेख है वेद पुराण कतेव कुरान जमीन जमान सबान के पेख है पौन आहार जति जद्दार सब सु विचार हजार देख है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सुसाज नाह दुर्जान दलेंगे पहरी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हल्ले ना हल्लेंगे तोर अरिल मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्री पर श्री भगवान कृपा बेन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अबिचारे सार की धार उछैया तोर देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़ी गड़ान के तोड़नहार सुबातन ही चक चार लविया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानव देव फनिंद निसाचर भूत भविख भगवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन्न प्रतापन बाढ़ जैत दुन पापन के ब पुंज खपेंगे साध समूह प्रसंग फिर जग सत्र सभा अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराधिप जौन त्रिलोक को राज करेंगे कोटि स्नान गजादिक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे ब्रह्म महेश्वर बिशन सचिपत अंत फसे जब फांस परेंगे जे नर श्रीपत के प्रस है पग ते नर फिर ना देह धरेंगे कहा भयो जो दो लोचन मूंद का बैठ रहे उपग ध्यान लगायो नहात फिर लिए सा समुद्रन लोग गयो।

काहुला पाहन पूत धर्यो सेर, काहुला लिंगरे लटकायो, काहु लखियो हर अवाची दिशा महे, काहु पछाह को शीस निवायो, को भूतान को पूजत है पस, को मृतान को पूजंत आयो, कूर क्रियावर जिहो

विचार प्रवीण अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूभृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक विदार कल काल करम विहीन सब कर्म धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापयो जह थाप अनखेद भेद अशेद मुखचार गावत वेद यह नेत निगम कहंत मुखचार बकत बेअंत अनभिज्य अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जे कीन जगत पसार।

जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जय कोट इंद्र निरपार कई ब्रह्म विषन विचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंध नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनेन्द्र कई देव आदि कुमार कई कृष्ण विषन अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद अमुकचार कई रुद्र शुद्र स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप कई कोक का भणंत कई वेद भेद कहंत कई शास्त्र सिमृत बखान कहु कथत ही सो पुराण कई अग्नहोत्र करंत कई उर्ध ताप दुरंत कई उर्ध बाहु संन्यास कहु जोग भेद उदास कहु निवली कर्म करंत कहु पौन आहार दुरंत कहु तीरथ दान अपार कहु जग कर्म उदार कहु अग्नहोत्र अनूप।

कई एक ठार स्थंत कहु करत जल मह जाप कहु सहत तन परताप कहु बाज बनह गरंत कहु ताप तनह सहंत कहु गृहस्थ धर्म अपार कहु राज रीत उदार कहु रोग रहत अपहरम कहु कर्म करत अकर्म कहु शेख ब्रह्म स्वरूप कहु नीत राज अनूप कहु रोग शोक विहीन कहु एक भगत अधीन कहु रंक राजकुमार कहु वेद व्यास अवतार कई ब्रह्म वेद रटंत कई शेख नाम उचरंत बैराग कहु सन्यास को फिरत रूप उदास सब कर्म फोकट जान सब धर्म नह फल मान बिन एक नाम आधार

हरि गुफे हरि शिते हरि नभे हरि इहा हरि उहा हरि जिमी हरि जमा हरि अलेख हरि अभेख हरि अदोख हरि अद्वैख हरि अकाल हरि अपाल हरि अशेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सुतेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभर्म हरि अकर्म हरि अजा हरि अभय हरि अभेद हरि अशेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अदंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि पदु हरि तपु हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तु हि थलस्तु हि नदस्तु हि नदस्तु हि वृचस्तु हि पतस्तु हि छितस्तु हि उधस्तु हि पजस्तु अंग रटस्तु अंग खटस्तु अंग जिमी तुहि जमा तुहि मकी तुहि मका तुहि अभू तुहि अभय तुहि अछू तुहि अछा तुहि जतस्तु हि व्रतस्तु हि गतस्तु हि मतस्तु हि।

मृगतर वरस देव मोन साधहि मरत बिंद के सदया ताही जिकी बडैया देत बंदरा सदैव पाय नांगे ही फिरत है अंगना धीत काम क्रोध में प्रवीर एक ज्ञान के विहीन छीन कैसे कह तरत है भूत बन चारी चित छौना सब दूधाधारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है तृण के बछैया धन लोभ के तजैया ते तो गौवन के जैया ब्रग भैया मानियत है नभ के उडैया ताहे पंछी की बडैया दे बगला बिड़ा ब्रेग ध्यानी ठानियत है जेते बड़े ज्ञानी तीनों जानी बै बखानी ना है ऐसी ना प्रपंच मन भूल आनियत है भूम के बसैया ताहे भूचिरी के जैया कह नभ के उडैया सो चिरैया के बखानिया फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कह आज से फिरैया ते तो भूत के पछानिया जल के तरैया को गंगेरी सी कहत जाग आग के बछैया सो चकोर साम मानिया सूरज सिवैया ताहे कौल की बड़ाई देत चंद्रवा चंद्रमा सिवैया को कवि का पहचानिया नारायण कछ मछ तिंदुआ कहत सब कौल नाव कौल जिया ताल में रहत है गोपीनाथ गुजर गोपाल सब

शिव से तपस्या ब्रह्मा से ना वेदचारी सनत कुमार सी तपस्या नानत है ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिरा।

योगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोस लोचन रत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रव को दलत है। मान से महीप और दिलीप कैसे

सिजदे करे अनेक तूप ची कपट भेद पोत दी अनेक दानी वावत हसीस का कहा भयो माल जोप काटद अनेक दंड सूतोना दंडोत अष्टांग अत तीस का कहा भयो रोगी जोप डारे रहे होर्द मोख मन तेना मुन नेहरायो आदि इस का कामना दीन सदा दामना प्रवीण एक भावना भीन कथे पावा जगदीश का शीस पट कट जग कान में खजूरा धसा मुंड छट कट मित्र पुत्र हूं के सुख सा आ कुछ रैया फल फूल को भछैया सदा बन को भ्रमया और दूसरो ना भूक सा का भयो भेड़ जो घसत शीस वृक्षन सा माटी को भछैया बोल।

जैसे एक स्वामी कहूँ योगी या बैरागी बन, कबू सन्यासी भेष, कबू सन्यास भेष बन के दिखावई, कहू पौनहारी कहू बैठ लाए तारी, कहू लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई, कहू ब्रह्मचारी कहू हाथ पे लगाए बारी, कहू ढंडदारी हो क्या लोगन भ्रमावई, कामना अधीन परियो नाचत है नाचन सु, ज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोग पावई। पंच बार गीदर पुकार परे शीत काल, कुंचर अगद अनेकदा पुकार ही, का भयो जो पे कल वत्र लियो काशी बीच, चीर चीर चोर ठाकु ठारन सोमारी, का भयो फांसी डार बुढ़ियो जड़ गंग धार, डार डार फांसी ठग मार मार डार ही, डूबे नरक धार मूड

जैसे जैसे एक आग देखन का कोट आग उठे नारे नारे होगा फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनुग धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाहेंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट हुए ताही ते उपज सब ताही में समाहेंगे। किते कच्छ मच्छ किते उनका करत पच्छ किते अच्छ वच्छ हुए सब पच्छ उठ जाएंगे। कितना वो बीज अच्छ पच्छ को करेंगे भच्छ केतक प्रत्यक्ष हुए पचाए खाए।

ताहि ते उपज सब ताहि मैं समाहिंगे कुकत फिरत किते रोवत मरत किते जल मैं डुबत किते आग मैं जरत है किते गंग वासी किते किते मदीना मक्का निवासी केतक उदासी के ब्रह्माई फिरत है करवत सहत केत भूम गडत केते सुअब चढ़त केत दुख भरत है ज्ञान में उड़त केत जल में रहत केते ज्ञान के विहीन जग जारे मरत है सोधहार देवता विरोधहार दानो बडे बोधहार बोधक प्रबोधहार जापसी घस हरे चंदन लगाए हरे चुआचार पूज हरे पहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भीतन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजाय हरे किन्नर सब पच हरे पंडत दपंत हरे तापसी तौप प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद नारागंग नारंगंग ना रूपंग ना रेखंग ना मोहंग ना क्रोहंग ना द्रोहंग ना द्वैखंग ना कर्मंग ना भर्मंग ना जन्मंग ना जातंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना पितरंग ना मातंग ना नेहंग ना गेहंग ना कामंग ना धामंग ना पुत्रंग ना मित्रंग ना सत्रंग ना भामंग अलेखंग अभेखंग अजूनी स्वरूपंग सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद रूपंग नहीं जान जाई कछु रूप रेखंग कहा वास्ता को फिर कौन भेखंग कहा नाम ताको कहा कह कहा वह कहा कह बखानु कह मैं नाव न रोगंग न सोगंग न मोहंग न मातंग न कर्मंग न परमंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परेंग परा परम प्रज्ञा प्रकाशी अशेदंग अशय आद अद्वै विनाशी न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आद अभंगे नमो आद अभंगे किति कृष्ण से कीट कूट उपाये उसारी गड़े फिर मेटे बनाए अगाधे अबाध अद्वै अविनाशी परेंग परा परम पूरण प्रकाशी न आदंग न बैदंग अगादंग स्वरूपे अखंडत प्रतापाद अच्छा विभूते न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग सनेहंग सनाते उडंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्रे न मित्रे सुभूते भविके भवाने अचित्रे नारायण नरंगंग न रूपंग न रेखंग न लोभंग न चोभंग भूतंग भेखंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेयंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग अजोनी अशयाद अद्वै अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न वर्णंग न वैदंग न रोगंग न सोगंग अभय निर्विखादंग अशेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग अप्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न परमंग न पायंग न रूपंग न पूपंग न कायंग न कर्मंग न त्रासंग न प्रासंग न पेदंग न परमंग सदैवं सदा सर्व सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे निर्युक्तंग प्रभाद अनुक्तंग प्रतापे अयुक्तंग अच्छायाद अव्यक्त्यथापे विभुक्तंग अच्छायाद अच्छा स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सुकंग न साकंग परेयंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मित्रंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भर्मंग न सर्मंग न साके न भर्मंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सत्रंग न मित्रंग न पुत्रंग स्वरूपे नमो आद्रूपे नमो आद्रूपे कहू कंज के मंज के परम भूले कहू रंग के राज के धर्म अलूले कहू देत के भेद के धर्म धामे कहू राज के साज के बाजता में कहू अक्षर के पक्षर के सिद्ध साधे कहू सिद्ध के बुद्ध के वृद्ध लादे कहू अंग के रंग के संग देखे कहू जंग के रंग पेखे कहू धर्म के कर्म के हरम जाने कहू धर्म के कर्म के भ्रम माने कहू चार चेष्टा कहू चित्र रूपंग कहू परम प्रज्ञा कहू सर्वभूपंग कहू नेह ग्रहंग कहू देह दुखंग कहू औखधि रोग के सुख सुखंग कहू देह विद्या कहू दैत बानी कहू जक्ष गंधर्व किन्नर कहानी कहू राजसी साक्षि तामसी हो कहू जोग विद्या धरे तापसी हो कहू रोग रहता कहू जोग जुगतंग कहू भूम की भुगत मैं भरम भुगतंग कहू देव कन्या कहू दानवी हो कहू जच विद्या धरे मानवी हो कहू राजसी हो कहू राज कन्या कहू सृष्टि की पृष्ठ की रिष्ट पुण्या कहू वेद विद्या कहू व्योम बानी कहू कोक की काप कथा कहानी कहू अद्र सारंग कहू भद्र रूपंग कहू मद्र पानी कहू शुद्र स्वरूपंग कहू वेद विद्या कहू काव्य रूपंग कहू चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपंग कहू परम पुराण कहू पार पावे कहू वैद कुरान के गीत गावा कहू शुद्ध सिखंग कहू ब्रह्म धर्मंग कहू वृद अवस्था कहू बाल कर्म कहू ज्वाल स्वरूपंग जरा रहत देहंग कहू नेह देहंग कहू त्याग गृहंग कहू जोग भोगंग कहू रोग रागंग कहू रोग हरता कहू भोग त्यागंग कहू राजसाजंग कहू राजरीतंग कहू पूरण प्रज्ञा कहू परम प्रीतंग कहू आरवी तोर के पारसी हो कहू पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहू देद भाख्या कहू देव बानी कहू राज विद्या कहू राजधानी कहू मंत्र विद्या कहू तंत्र सारंग कहू जंत्र रीतंग कहू शस्त्र
रंग। कहु होम पूजा कहु देव अर्चा कहु पिंगला चारणी गीत चर्चा। कहु बीन विद्या कहु गान गीतं कहु मरिच भाग्या कहु वेद रीतं। कहु नृत्य विद्या कहु नागवाणी कहु गारुड़ गुड़ कथा कहानी। कहु अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहु वेद विद्या भूतं प्रभा हो। कहु शैल शाला धरे शत्रधारी कहु राजसा जंग राजाधिकारी। नमो नाथ पूरे सदा सिद्धदाता अशेदी अशा विधाता। नात्रस्तं नाग्रस्तं समस्तं सरूपे नमस्तं नमस्तं।

जय रोग सोग नहीं सत नहीं रूप रास, जय रोग सोग नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत, जय काल बाल कटियो न अंग अक्षस रूप अख्या भंग, जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव, जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अक्षा तूल, जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कलप जोग साधत दुरंत, तन सीध घाम बरखा सहंत कई कलप एक आसन पितांत, कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तव पावत ना पार, कई उर्द बा देशन ब्रह्मांत कई उर्द मध पावक झुलांत, कई सिमृत शास्त्र उचरंत वेद कई को काव कथत कतेव, कई अगन रोध कई पवन आहार कई करत कोट मृत को आहार, कई करत साक पत्र भक्ष नहीं तदप देव होवत प्रत्यक्ष, कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत, को वेद रीत जग्याज करम को अगन होत्र को तीरा धर्म, कई देश देश भाखा रटन कई देश देश विद्या पढ़ंत, कई करत भान भान तन विचार नहीं नैगता स्पायत ना पार, कई तरत कई तीरत तीरत भरम सो भरम कई अगन हो कई तेव भर करम, कई करत वीर विद्या विचार ने तदपता स्पायत ना पार, कौ राज रीत कौ जोग धर्म कौ सिमृत शास्त्र उचरत सो करम, निवलियाद करम कौ हस्तदान कौ अश्वमेध मको बखान, कौ करत ब्रह्म विद्या विचार कौ जोग रीत कहु वृद चार, कहु करत जक्ष गंधर्व गान कहु धूप देव कहु अर्घ दान, कहु पितृ कर्म कहु वेद रीत कहु नृत्य नाच कहु गान गीत, कहु करत शास्त्र से मृत उचार कई भजत एक पग निराधार, कई नेह दे कई जे गेह वास कई भ्रम देश देशन उदास, कई जल निवास कई अगन ताप कई जपत उर्द लटकांत जाप, कई जपत जो कल्पन प्रजंत नहीं तदपता स्पायत नांत, कई करत कूट विद्या विचार नहीं तदप देष्ट देखे मुरार, बिन भगत सगत नहीं परत पान बहु करत होम अर्जग दान, बिन एक नाम एक चित्त लीना फोकटो धर्म फोकटो सरब धर्मा विहीन, तो प्रसाद तोटक छंद जय जंपो जुगण जूह जुअंग भय कंपो मेर पयाल भुअंग, तपताप सरब जलेर थलंग धन उचरत इंद्र कुमेर बलंग, अनखेद स्वरूप अभेद अभियंग अनखंड अभूत अछेद अशियंग, अनकाल अपाल दयाल असुअंग जय ठट्यंग मेर आकाश भुअंग, अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रच्यंग देव अदेव बरंग, सबकी निदीन जमीन जमा जय रच्यंग सर्व मकीन मका, जय राग न रूप न रेख रुकंग जय ताप न साप न सुख सुखंग, जय रोग न सोग न भोग पुअंग जय खेद न भेद न छेद शयंग, जय चात न पात न मात पितंग जय रच्यंग क्षत्रि क्षत्र स्थितंग, जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैक न राग न दुख गणंग, जय अंड ते ब्रह्मांड रच्यो दश्चार करी नव खंड सचियो, रजतामस तेज अतेज कियो अनुभव पद आप प्रचांड लियो, श्री सिंधुर बिंद नगिन नगंग श्री जाच्छ गंधर्व फणिंद कुजंग, रच देव अदेव अभेव नरंग नरपाल नरपाल कराल दृगंग, कई कीट पतंग भुजंग नरंग रच अंडज सीतज उत्त भुजंग, कई देव अदेव सराज पतंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग, प्रभ जात न पात न जो जुतंग जय तात न मात न प्रहत सुतंग, जय रोग न सोग न भोग पुअंग जय जंप है किन्नर जाच्छ जुवंग, नरनार न पुसंग जाय किए गण किन्नर जाच्छ भुजंग दिए, गजबाज रथा दिख पांत गणंग भूत भविक भगवान तुवंग, जय अंड सीतज जे रजंग अज भूम आकाश पताल जलंग, रच पावक पवन प्रचंड बलि बन बास कियो फल फूल कली, वो मेर आकाश निवासी तंग रच रोज आकाश चंद्र बृतंग, दूत चांदनी स दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई, जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाई दिए, जय लोक चतुर्दस चार रचे नर गंधर्व देव अदेव सचे, अनधूत अभूत अछूत मतंग अनगाद अव्याद अनाद गतंग, अनखेद अभेद अशेद नरंग जय चार चतुर्दिशाक्र फिरंग, जय राग न रंग न रेख रुखंग जय सोग न भोग न जोग जुगंग, भुव गंजन भुव भंजन गंजन आज सिरंग, जय बंद देव अदेव नरंग गण किन्नर जाच्छ भुजंग रचे, मन मानक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग, जय पार न पावत पूर मतंग अन खंड स्वरूप अडंड प्रभा, जय जंपत वेद पुराण सभा जय वेद कतेव अनंत कह, जय भूत अभूत न भेद रह जय वेद पुराण कतेव जप, सुत सेंध अदो मुख ताप तप कई कल्पन लो तप ताप कर नहीं नै कृपा निध पान पर, जय फूगड़ धर्म सप तज है एक चित्त कृपा नित को जप है, तेव या भव सागर को तर है भव भूल ना देह पुनर्धर।

अगंज आद देव है अभंज भंज जानी है अभूत भूत है सदा गंज गंज मानी है अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास देव सर्व साथ है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा अगंज गंज गंज है सदैव सिद्ध वृद्ध दा अनूप रूप स्वरूप है अंशिज तेज मानी है सदैव सिद्ध शुद्ध दा प्रताप पत्र जानी है न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अधोग अलाग अधग है अभूत अभ्रम अभेक है न तात मात जात है न पाच है न बरन है अधेक है अधेक असेक अभेक है सदैव विश्व परण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेष विश्व भरण है जिमी जमान के विखै सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है लेखनाथ जानी है सदीव सर्व ठौर में विशेख आन मानी है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराण अकुराण नीत नीत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताई है अगंज आदेव है कहो सो कैस पाई है जिमी जमान के विखै समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होत है न हान है न बान है समान रूप जानी है मकी और मकान अप्रमाण तेज मानी है न देह है न गेह है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है।

ना जाच है ना गंधर्व है ना नर है ना नार है, ना चोर है ना शाह है ना शाह को कुमार है, ना नेह है ना गेह है ना देह को बनाओ है, ना छल है ना छिद्र है ना छल को मिलाओ है, ना यंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को स्वरूप है, ना राग है ना रंग है ना रेख है ना रूप है, ना यंत्र है ना मंत्र है ना तंत्र को बनाओ है, ना छल है ना छिद्र है ना छाया को मिलाओ है, ना राग है ना रंग है ना रूप है ना रेख है, ना कर्म है ना धर्म है अजन्म है अभेक है, ना तात है ना मात है ख्याल अखंड रूप है छेद है भेद है ना रंग है ना रूप है, परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है, अगंज है अपंज है करीम है कुरान है, अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है ना रोग है ना सोग है ना भेद है ना पंड है, ना अंग है ना रंग है ना संग है ना साथ है, प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमाथ है, ना सीत है ना सूच है ना ग्राम है ना घाम है, ना लोभ है ना मोह है ना क्रोध है ना काम है, ना देव है ना दैत है ना नर को स्वरूप है, ना छल है ना छिद्र है ना छिद्र की विभूत है, ना काम है ना क्रोध है ना लोभ है ना मोह है ना द्वैक है ना भेक है ना दुई है ना ध्रुव है, ना काल है ना बाल है सदैव दयाल रूप है, अगंज है अभंज है भर्म है भूत है, अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है भूत अभेक है बलिया रूप राग रंग है, न द्वैक है न भेक है न काम क्रोध कर्म है, न जात है न पात है न चित्र चयन वरण है, व्यंत है अनंत तेज जानिया अभूम अभिज है सदा अचेज तेज मानिया, न आद है न व्याध है अगाध रूप लेखी है अदोख है अदाग है अच्छा प्रताप पेखिया, न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है, न यंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है, न शल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है अभंग है अनंग है अगंज ती विभूत है, ना काम है ना क्रोध है ना लोभ मोहकार है, ना आद है ना गाद है ना व्याद को विचार है, ना रंग राग रूप है ना रूप रेख रार है, ना हाव है ना भाव है ना दाव को प्रकार है, गजाधपि नराधपि करंत सेव है सदा, सितस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा, अगस्त आद जे बड़े तपस्पति विशेखिया, व्यंत व्यंत व्यंत को करंत पाठ पेखिया, अगाध आद देव की अनाद बात मानिया, न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिया।

रूप राग ना रेख रंग न जन्म मरण विहीन आदनाद अगाध पुरख सुधर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्र तंत्र जाकु आदि पुरख अपार हस्त कीट बिखै बसे सब ठौर मैं निर्धार जात पात न तात जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखै रमियो जे चक्र जेह न चित्र आदि देव उदार मूरत अगाध नाद अनंत आद अंत न जानिए अभिखा देव दुरंत देव भेव न जानी जे करम जेह मरम वेद कतेब सनक संकेश नंदन पावही न सेव जज किंदर मच्छ मानस मृग उरग अपार नेत नेत पुकारी सी सक्र अमुख चार सरप सपत पतार केतर जाप ही यह जाप आदेव अगात तेज अनाद मुरत अताप जंत्र मंत्र न वही कर तंत्र मंत्र न कीन सरव ठार रहे विराज तिराज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दानु न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखै विराजे सूत्र भी वह नाहे गूढ़ गौड़ न पिहिल भीघर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मध्य ऊर्ध न भूम आकाश अनूप जा जन्म न काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीरथ जात्रण देव पूजा गौर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिया यह ज्योत शेष नाम संपन्न नेत पूरण होत शोध शोध हटे सब असुर विरोध दानव गरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त थके महाकव गड़द गाढ़ अनंत हार हार कहियो सबु मिल नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखी न सेव कतेब देवदान मूड मानो जच न जाना जेब भूत भगवान भूपत आदनाथ अनाथ अगन बाए जले थले महे सर्व ठौर निवास देह गेहना नेह स्नेह अबेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयाल अद्वेख चक्र जेह न वरण जागो जात पात न भेख रूप रेख न रंग जागो राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व घायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंद याल स्वामी आ देव अपाल दीन बंद प्रवीण श्री बसरार जात पात न गोत्र गाता रूप रेख न वरण सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू गो भरण दुष्ट गंजन शत्रु भंजन परम पुरख प्रमाथ दुष्ट हर्ता सृष्टि करता

देव अदेव गंधर्व किन्नर मच्छ कच्छ अपार भूम आकाश जले थले मेहमानिया जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट हरता काम तुष्ट हरना सृष्ट करना दयाल लाल गोविंद मित्र पालक सत्रघालक दीन दयाल मुकंद अघौ दंडन दुष्ट खंडन काल हुके काल दुष्ट हरणं पुष्ट करणं सर्व से प्रतपाल सर्वकर्ता सर्वहर्ता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज पहाम सर्व भुगता सर्व जुगता सर्व करम प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व करम अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विष्णुभर्ता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदेव अखंड भूत अकार जले थले मैं जप जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिया सब चार आदेव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रचार अन्दाता ज्ञान गाता श्रमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता गरम ज्ञाता धर्म चार विचार भेद भेव न पावई शिव रुद्र अमुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास तनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद आंता मध्य जागो भूत भव भवान सत द्वापर तृतीया कल युग चत्र काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व अपार हार हार तखे सब ने पाया जय पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कोट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच अपछ अपार सोध सोध थके महा

प्रसाद दीरहग त्रिभंगी छंद दुर्जन दल दंडन असुर बिहंडन दुष्ट निकंडन आदवृति चछरासुर मारण पतित उदाहरण नरक निवारण गूढ़ गति अच्छे अखंडे तेज प्रचंडे खंड उडंडे अलखमते जय जय हो सी मह खासुर मर्दन रम कपर्दन छत्र छिते आसुरी विहंडन दुष्ट निकंडन पुष्ट उडंडन रूप अति चंडासुर चंडन मुंड मारण नरक निवारण अधम उदाहरण ऊर्ध्वाधे जय जय हो सी मह खासुर मर्दन रम कपर्दन आदि वृते डावर डवंक बबर बवंक भुजा फरंक।

राम कपरदन दैत जिनंग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंडन खंड अखंडन खून खिते दामनी दमंकन ध्वजा परंकन फणी फुंकारन जोध जिते सरदार बिबरकन दुष्ट प्रकरखन पुष्ट प्रहरखन दुष्ट मथे जय जय हो सी महखासुर मर्दन भूम आकाश तल अर्ध अधे दान दामनी प्रहासन सुचभ निवासन सृष्ट प्रकाशन गूढ़ गते रक्तासुर चिंती अनल बिवंती जोग जयंती खड़ग धरे जय जय हो सी महखासुर मर्दन पाप विनाशन धर्म करे अग ओग निवारण दुष्ट प्रचारण श्रेष्ठ वारण शुद्ध मते पणी अर्पण कारण बाग बकारण शस्त्र प्रहारण साध मते सैति स्नान अष्ट प्रभान भूल निबाण तेज अतुलंग जय जय हो सी महासुर मर्दन भूम आकाश पताल जलंग चाचर चमकारण चिच्छुर हारण धूम दुकारण द्रप मथे दाढ़ी प्रदंते जोग जयंते मनोज मथंते गूढ़ कथे करम प्रणासन चंद्र प्रकाशन सूरज प्रदर्शन अष्ट भुजे जय जय हो सी महासुर मर्दन भरम विनाशन धरम दुजे घुंगरु घमंकण सहस्र झमंकण फणि अर्पुंकारण धरम दुजे अष्टाद प्रहासन सृष्टि निवासन दृष्ट दुष्ट प्रणासन चक्र गते केसरी प्रवाह शुद्ध सनाय अगमथा एक वृथे जय जय हो सी महासुर मर्दन आदि कुमार अगाध वृते सुनर मुन बंद दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावर कुमारी अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकणी प्रसुवन सुनर मोहन सिंहारोहण बितल तले जय जय हो सी सब ठौर निवारण बाय पताल आकाश अनले संकट निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकरखन तुंद तबे दुग दुग दहंती ज्वाल जयंती आदि अनाद अगाध सुदातमर्पण तरक वितरकण तपत प्रताप जप दिवे जय जय हो सी शास्त्र प्रकार खाना आद अनिल अगाध अभि चंचला जखंगी अनज भुजंगी तुन तरंगण तिच सरे करकथा कुठारे नरक निवारे अधम उधारे तूर भुजे दामनी दमंके के हर लंके आद अतंके क्रूर किथे जय जय हो सी रक्तासुर खंडन सोम्भ चक्र निसोम्भ मथे बारज बलोचन वृतन विमोचन सोच विसोचन कौच कसे दामनी प्रहासे सुख सरनासे सुभृत सुभासे दुष्ट ग्रसे।

घंट का विराजा रुण गुण बाजा भ्रम भय भाजा सुना सुरंग कोकल तुल लाजा कल्पिक भाजा सुकुप राजा मधुरंग दुर्दंदल दज्जा मंथन रिज्जा सबन पज्जा रोहरणंग जय जय हो सीमा खासुर मर्दन चंड चक्र तन आद गुरंग चाचरी प्रजोधन दुष्ट विरोधन रोध आरोधन क्रूर वृति यमराज विद्युंसन प्रलय प्रजुंसन जाग प्रजुंसन शुद्ध मते जाल पप जयंती शत्रु मथंते दुष्ट प्रदाहन गाढ़ मते जय जय हो सी मैं खासुर मर्दन आजुगाद अगाध गते।

खतियान खतंगी अभय अभंगी आज अनंगी अगाध गति रलाज विहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृत्ति सुर नर प्रतिपारण पतित उदाहरण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय उसी मैं खासुर मर्दन विश्व विधुंसन सृष्टि करे दामनी प्रकाश उन्तन्ना से ज्योत प्रकाश अतुल बले दानी प्रकरकण सर्वर वर्खण दुष्ट प्रधरकण बितल तले अष्टायत वाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ गति जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद अनाद अगाध वृत्ति दुख दुख प्रवचन सेवक रक्षण संत प्रत्यक्षण शुद्ध सरे सारंग सनाह दुष्ट प्रदाह अर्धन गाहे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने।

चमकन शस्त्र झमकन दामिन दमकन आदि भृति डुग डुगी दमन का बाघ गंगा भुजा परंग का सुद गति जय जय हो सी मह खासुर मर्दन आजुगाद अनाद मति तछराथ मारण नरक निवारण पति तो धारण एक भटे पापान बिहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रानन चारा नरक निवार पति तो धारे मुंड मथे जय जय हो सी मह खासुर मर्दन धूम्र विदंसन आदि कथे रक्तासुर मर्दन चंड चक्र दन दानव अर्दन बिड़ाल बधे सरधार विभंसन दुर्जन दर्गन

कर्ता करीम कादर कृपाल अद्वै भूत अद्वै दयाल दाता दुरंदुक दो करहत जय नेत ने सब वेद कहत कई ऊंच नीच की नो बना सब वार पार जाको प्रभाव सब जीव जान जान अंत जाय मन मूड क्यों ना सेवंत ताहे कई मूड पदर पूजा करंत कई सिद्ध सात सूरज देवंत कई पलट सूर सिद्धा कराए प्रभ एक रूप द्वै का लखाए अंश जितेज अनभय प्रकाश दाता दुरंत अद्वै नाथ सब रोग सुख ते रहत रूप अनभय काल अच्छा स्वरूप करुण धान कामल कृपाल दुख दो घर दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाथ जल थल प्रभाव सर्वत्र साथ जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जैसा त्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अविचल अपार जानी न जाय रूप रे के बास तास के कौन पहेग कै नाम तास है कवन जा जैसा त्र मित्र नहीं पुत्र

कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविक भवान बनाए देव अदेव खपे अहं मेव न भेव लख्यो भ्रम शिव भरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब ठके कर हाथ नाए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पशिव किंत्री पद्मा पद पाए आद अनंत अगाध अद्व्यक्ष भूत भविक भवान अभ अंत विहीन अनातम आप अदाक अदोग अशित रस है लोगन के करता हरता जल में थल में भरता प्रवह दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न सुख न भोग न बह देह विहीन स्नेह सबूत नेह विरक्त अगेह अच्छा है जान को दीत अजान को दे जमीन को दे जमान को दह काहे को डोलत।

ये पड़ बीज बचावा जाछ भुजंग सुदान देव अभे तुम सब ही करते आव भूम आकाश पताल रसातल जाछ भुजंग सब सिर आव पाय सकने पार बरवा हूँ को नेत ही नेत वेद बताव खोज थके सभी खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आव नारस से चतुरानंद से रूम नारिक से सब हो मिल गायो वेद का देव ना वेद लखियो सब हार परे हर हाथ ना आयो पाय सकने पार उमा प्रसिद्ध सनात सनातन ते आयो त्यान तरो देह को मन में यह को अमित ओज सब जग छायो वेद पुराण के देव कुरान अभेद निर्पाण सब पचहारे वेद ना पाय सकियो अन भेद को खेदत हैं छेद पुकारे राग ना रूप ना रेख ना रंग ना साग ना सोग ना संग तिहारे।

अत्र के चलैया छत छत्र के धरैया छत्र धारियों के चलैया माँ सत्रण के साल है दान के दिवैया महामान के बढ़िया अवसान के दिवैया है घटैया जम जाल है युद्ध की जितैया विरोध के मिटैया माँ बुद्ध के

पूर्वी न पार पव हिंगुलाहे मलत अवगोर कर तेजे गुण गाव तेरे नाम है। युग युग साधा पौन साधना कितेक बाधा आरब के आर भी आराधा तेरे नाम है। फरा के फिरंगी मान कंधारी कुरेसी जान पच्छम के पच्छमी पछाने निज काम है। मरहटा मघेर तेरी मन सो तपस्या कर दृढ़वती लंगी पहचान धर्म धाम है। बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिल वाली तेरी आगे मैं चलत है। रोह के रोहिल मांग देश के मघेल वीर बंग से बुंदेल पाप पुंज को मलत है। गोखा गुन गावे चीन मचीन के शीश ने आवे तिब्बते दया दोग देह के दलत है। जिन्हें दो आयो तिन पूरन प्रताप पायो सर्व धन धाम फल फूल सो फलत है। देव देवतान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को भेद कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और का उपेन अधीन सदा अधीन कहियत है। पाइय न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उजार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार पल पाछा पहुंचत ताहे चीट की चिंगार पहले ही सुनियत है। किते इंद्र द्वार किते ब्रह्मा मुख चार किते कृष्णावतार किते राम कहियत है। किते सतराशी किते सूरज प्रकाशी किते मुंडी या उदासी जोग द्वार दहियत है। किते महादीन किते व्यास प्रवीण किते कुमेर कुलीन किते जक्ष कहियत है। करते है विचार पैना पूरन को पावा पार ताई ते अपार निराधार लहियत है। पूरन अवतार निराधार है न पारावार पाई है न पार पै पार कै बखानिया। अद्वै विनाशी परम पूरन प्रकाशी महारूप हो के राशि है नासी कै कमानिया। जंतरु न जा जा की बापु न मायता की पूरन प्रभा की सो छटा कै अनमानिया। तेज युगो तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र कै गजानिया। तेज हूँ को तर है के राजसी को सर है के शुद्धता को घर है के सिद्धता की सार है। कामना की खान है के साधना किसान है।

दीनन को दाता है, गनीमन को गारक है, साधन को रक्षक है, गुणन को उपहार है, सेध को स्वरूप है, के बुद्ध को विभूत है, के क्रोध को अभूत है, अच्छा विनाशी है, काम को निंदा है, के खूबी को दिहंदा है, गनी मन गरिंदा है, के तेज को प्रकाशी है, कालू के काल है, के सत्रण के साल है, के मित्रण को पोखत है, वृद्धता की वासी है, जोगो को यंत्र है, के तेजु को तंत्र है, के मोहनी को मंत्र है, के पुराण प्रकाशी है, रूप को निवास है, के बुद्ध को प्रकाश है, के सिद्धता को वास है, के बुद्ध घर है, देवन को देव है, निरंजन अभेव है, अदेवन को देव है, सिके सुध

नानक को खंड है, महीपन को मंड है, के स्त्री है ना नर है, विश्व को भरण है, के अबदा को हरण है, के सुख को करण है, के तेज को प्रकाश है, पाई न पार पार बारहू को पार जाको, कि जत विचार सु विचार को निवास है, हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विद्या वह पूर्वी न पार पावे आशा ते अनास है, देवन को देव महादेव को देव है, निरंजन अभेवनाथ।

राजन के राजा महासाजू के साजा महाजोग हुगो जोग है धैर्या धर्मशाल के कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथ ही है के काल है कुचाल के शीर कहते शिरावद छाछ कहते छतरा नेर छप्पा कर कहते शब कालिंद्री के कुल के हंस ने सिहारू मीराती हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के परासी पलव गढ़ रूपा कैसी रामपुर सुरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदा गढ़ तिकी रत तिहारी रही मालती सी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीता सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हमाल हिमालय हर हार सी हलब्बा नीर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रा घेर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदाबाद कीरत तिहार की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाइयत है बखरी कंधारी गोर गखरी गर्दयाचारी पौन के आहारी तेरो नाम त्याहियत है पूरब पलाउ काम रूप औकम सर्व ठार में विराज जहां जहां जाइयत है पूरन प्रतापी यंत्र मंत्र त्यातापी नाथ किरत तिहारी को ना पार पाइयत है तो प्रसाद पादड़ी शंद अदवा अनास आसन अडोल अदवा अनंत।

जहता प्रफुल्ल सुंदर सुजान, फुलतंग प्रफुल्ल लहत मोर, सिर ढुरहे जान मन मत चौर, गुजरत कमाल राजक रहीम, करुणा निधान।

0: महाराज जी नूं छड़दे ही नहीं हांडा। चलो एक गल याद रखो प्यारिओ, ज्ञान ध्यान दीआं गल्लां हुंदीआं, लेकिन शरीर है करके ही तां सब कुछ है ना प्यारे। ते शरीर ते जिहड़े शरीर नूं ही वेख करके आपां नूं वाहिगुरू जी दी सोझी होई है। हुण उह शरीर जिहड़ा ना सदीव काल दे लई विछोड़ा दे रिहा, जदों बंदे चलाणा कर जांदे ना प्यारिओ, याद रखो जरा भी अपा अपने कोई रिश्तेदार संबंधी कोई भी तुसी देखो, भावना एक बनाओ के एक शरीर सी ते उन्हां नूं वेखदे सी, जो मर्जी उन्हां दे नाल कार विहार हुंदा, लेकिन जदों शरीर खत्म हो गया, शरीर मर गया, दोबारा वह शरीर जिहड़ा उस रूप दे विच तुहानूं कदे प्राप्त नहीं होवेगा। हाँ तस्वीर बना सकते हो, मूर्तियां बना सकते हो, लेकिन वह शरीर दे विच वह जा वह जी गल जिहड़ी है तुहानूं नहीं बनती है। वह शरीर एक बारी नाश हो गया, वह तो बाद वह रूप दे तुहानूं दर्शन नहीं होणगे। तां करके गुरु के सिंह प्यारिओ ये चाहते कि असी वध तो वध लाहा लै लईए, वध तो वध महाराज जी दे कोल बैठ करके पातशाह जी दे दर्शन करिए, दिदारे करिए। गुर की मूरत मन मह ध्यान, महाराज जी नूं महाराज जी दे दर्शन करके महाराज जी दी मूरत नूं अपने अंतर आत्मा दे विच वसा लईए।
1: हाथ जोड़ अरदास बखानी,
0: गुरु के सिंघां ने हाथ जोड़ के अरदास करनी कीती।
1: आप उपदेशन बानी
0: कहिंदे सत

0: वापस चल जाते। इस तरह ही सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज जिस तरह बदल पानी लै करके आउंदा ते सतगुरु महाराज दरगाहों बाणी लै करके आउंदे हन। मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ ओ तुर की बाणी खसम की बाणी ताई ता क्या ना जैसी मैं आवे खसम की बाणी ओ खसम की बाणी सच की बाणी जड़ी है सच की बाणी नानक आख है सच सुनाए सी सच की बेला ओ सच की बाणी जड़ी सच खंड तो लै करके आंदे ते बाणी दी बरखा करदे हन बाणी दी दात दे करके फिर सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज अपने तन दा पर्दा कर लैंदे हन। बदल पानी लै करके आए जदों बदलों ने प्यारे पानी जिहड़ा उलीच दिता सारा पानी जदों धरती दे उत्ते आ गया फिर बदल जिहड़े हन ओह विलुप्त हो जांदे। इस तरह सतगुरु जी नाम बाणी दा उपदेश लै करके आउंदे ते बाणी दी बरखा करदे हन बाणी दी दात दे करके जदों उन्हां दा काम पूरा हो जांदा ते सतगुरु महाराज जी भी तन दा पर्दा कर लैंदे हन।
1: नित सिखन के रहै सहाय
0: एक गल याद रखना चाहिदा कि तन दी दूरी होंदी है तन नाश हो जांदा लेकिन आत्मक तौर ते सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए सतगुरु महाराज सदा गुर मेरे संग सदा है नाले सदा अपने सेवकां सिखां दे आंग संग सहाई हुंदे हन।
1: उपजह प्रेम भाव मन जाए
0: जिन्हां दे मन दे विच प्रेम दी भावना प्रगट हुंदी है
1: संग सतगुर है ताके
0: फिर प्यारियो उन्हां दी भावना ए बनदी है सदा अंग संगे अपंगं विभूते फिर उन्हां नूं पुछो ओ एही कहिंदे गुर मेरे संग सदा है नाले सिमर सिमर तिस सदा संभाले जदों असी उन्हों सिमरते हाँ याद करते हाँ और सतगुरु सच्चे पातशाह जी महाराज अंग संग साढ़े सहाई होंदे हन। यह याद सानू रखना चाहिदा कि गुरु के सिखो अज भी सतगुरु महाराज जी ने तन दा विछोड़ा दे दिता लेकिन जेड़े भावना वाले चढ़दी कला वाले अज भी सतगुरु महाराज उन्हां दे अंग संग सहाई हन। जिथे प्यारियो आपां याद करदे आं सतगुरु महाराज जी नूं सतगुरु महाराज किसे ना किसे रूप दे विच प्रतख नहीं परोख रूप दे विच गुप्त रूप दे विच जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता जो भी ओदी भगती करदा उन

सब सुरती मिल सुरत कमाई, सब की मत मिल की मत पाई, ज्ञानी ध्यानी गुर गुर हाई, कहन न जाई तेरी तलवडियाई। सब सत सब तप सब चंगियाईया, सिद्धां पुरखां कियां वडियाईयां, तुद विण सिद्धि कना न पाईया, करम मिल नाही ठाक रहाईया। आखण वाला क्या विचारा, सिफती भरे तेरे भंडारा, जिस तू देह

प्राण सखाई, हर कीरत हमरी रह रास रहा, हर जन के वड भाग वडेरे, जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिलै तृपता सह मिल संगत गुण प्रगास, जिन हर हर हर रस नाम ना पाया, ते भागहीन जम पास, जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, धृग जीवै धृग जीवास, जिन हर जन सतगुर संग

खड़ग केत मैं शरण तिहारी, आप हाथ धैल हो उबारी, सर्व ठौर मोह हो सहाई, दुष्ट दोख ते लिहो बचाई, कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण सुबराता, किलभक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखियन को छय करता, श्री अलदुजा भय दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला, मन बाशद फल पावे, सोई दुख ना तुसै पिया।

कह चौपई सम सतरै सहस भणी जय अर्ध सहस भुन तीन कह जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र पखयाने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संबादे चार सौ पांच चरित्र समा

जग माहे जो तह प्रभ को ध्याए है अंत स्वर्ग को जाहे दोहरा हर हर जन दुई एक है बिचार किशना है जलते उपज तरंग ज्यो जल ही बिखै समाह दोहरा जब आस प्रभ को भयो जन्म धरा जग आए अब मैं कथा संक्षेप ते सब हूँ कहत सुनाए कब बाच दोहरा ठाड भयो मैं जोर कर बचन कहा सुर न्याय पंथ चले।

सब नागला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहा नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहिबा क्या ना ही घर तेरे घर ता तेरे सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सला

खालसे नूं दिलासा देना भरोसा दवाना फिर बाबा संत ब्रह्म ग्ञानी संत रतन दास जी आके गुरु पंथ खालसा जी पाशा किते नहीं गए आ वेखो अपने हस्त कमलां नाल प्रसाद दित्ता मैनू ते कह जाके गुरु खालसे नूं भरोसा दवाना सदा ही अपने पंथ की अगवाई करांगा घाट है मेरे नलायकी पुणे विच हो सकती है सतगुरु विच घाट नहीं है भूली मालनी है यो सतगुरु जागता है देओ उते सदा ही बख्शिशा का दाता है सदा ही रहमता निवाजण वाले ने सानू जी जदों भी खाली रहेगा अपने कर्म करके ही रहेगा महापुरुष कहिंदे हुंदे आ जदों अरदास करनी गुरु पातशाह दे चरणां च बेनती करे गुरु पातशाह कर्म ना वेखियो कृपा दे घर विच आ जिओ जे कर्म वल वेखोगे ते माता सुलखणी जी खाली भी जा सकदे ने छेवें पातशाह दे कोलों सत जन्मां लई वचन करदा खाली है ते जे कृपा दे घर विच आउंदे ने ते फिर इसे जन्म च ही सत भुगता देंदे ने औलाद दी भुख सी ना जी कर्म करके खाली है कृपा करके भरदा है आशा तरस रखियो दाता जी कर्म ना वेखियो कृपा दे घर विच आके आप जी दे चरणा च अरदास है जोदड़ी है चंगे आ माड़े आ प्रभ जी ओ खसमाना कर प्यारे अपना बिरद पछाणो

तर्श करो, थोड़ी सेवा नू बहुती करके जाणियो, संगती रूप विच आओ अरदास करके फिर खिमा मंगदे आ। तखत साहब दे सारे सचखंड बोर्ड सिंह साहब, बाबा कुलवंत सिंह साहब जी, जथेदार साहब बाबा राम सिंह साहब जी, समूह मैनेजमेंट, साध संगत जी शीस ते हाथ रख के कलगीधर पातशाह ने, साहब जी गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने कल और अज सेवा ली है, महापुरुषा ने भी कीर्तन की हाजरी भरी, सतगुरु कृपा करन, अरदास करदे आ।